0: होवनि आकार हुकम न कहया जाई।
1: हुकमी होवन जी हुकम मिलाय वडियाई।
0: हुकमी उत्तम नीच हुकम लख दुख सुख पाई है।
1: एक ना हुकमी बख्शीस एक हुकमी सदा पवाई है।
0: अंदर सब को बाहर हुकम ना कोई।
1: नानक हुकमै जेब जय ता हमै कह।

0: आप हाथ मुझे भरिया मरण काल का त्रासन भरिया
1: जो सदा हमारे पच्छा श्रियस्त जो करे हो रक्षा
0: राख लिहो मुहि राखन हारी साहिब संत सहाय प्यारी
1: दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता
0: काल पाई ब्रह्मा पपतरा काल पाई शिव जू अवतरा
1: काल पाई कर भीषण प्रकाशा

0: सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव आर्ज गाद स्वरूप स्वयंभव
1: अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संगरो
0: पाता सकल मलेश करो रण काता
1: जय अस्तुर तब सरणी पर तिनके दुष्ट दुख्त वह मरे।

0: सोहिला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहिला सतगुरु सोनाया
1: यो तिन कह मन वसया जिन त्रु लिखिया आया
0: इक फिरेक नेरे करे गल्ला गली कने ना पाया
1: कहे नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया
0: पवित होए से जना जिनी हर त्याया
1: हर त्याया पित होए कुरमुख जिनी त्याया
0: पवित माता पिता कुटुंब सहत सियो पवित संगत
1: कहंदे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया
0: कहे नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हाथ आया
1: करमी सहज न उपजे बिन सहजे सहसा
0: ना जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए
1: सहसे जियो मलीन है कित संजम धोता जाए
0: मन तो बहु शब्द लागो हर सियो रहो चित लाए
1: कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजे ए सहसा
0: जियो मैले बाहरों निर्मल बाहरों निर्मल।

0: हो अमृत सदा रहो, हर रंग जपे हो सारग पानी।
1: कहे नानक सदा गाव हो एह सच्ची बाणी,
0: सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो।

श्याम कै स्तंभ स्वामी सच में असे साच रहे सबको सच समावे। रिग कह रहा प्रभु राम नाम देवा मैं सूर मै लिया प्राशत जाय नानक तौ मुखंतर पाए। जुज मजोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया।

दुष्ट धर्म वरकु नाम जप निर्मल कर्म सकल क्रिया मैं उत्तम क्रिया सा संग दुर्मत मल हरिया सगल उदम मैं उदम पलार का नाम जपो जी सदा सगल बानी मैं अमृत बानी अर को जसुन रसन बखान।

जे प्रसाद पाठ पटम ब्रहणावै तसे त्यागत अवरलुभावै जे प्रसाद सुख से सुवीजै मन आठ पैरता का जस गा बीजा जे प्रसाद तुई सबको मान है मुक्ता को जस रसन बखान है जे प्रसाद तिरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जब तुदर गै मान पावै नानक पासे ती घर जावै जे प्रसाद रो कंचन देही लिवलावो तिस राम स्नेही जे प्रसाद तिरा उल्ला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल छद्र ठाके मन सरनी परम ठाकुर प्रभ ताकै जे प्रसाद तुझको ना पाहुचै मन सास सा सिमरो प्रभ उचै जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक धागी भगत करे जे प्रसाद भूखन पहरी जय मन ते सिमरत गिवालस गीजा जे प्रसाद सव हस्त सवारी मन ते प्रभ को कबू ना बिसारी जे प्रसाद बाग मिलक तना राख प्रोय प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बणत बनाई उठत बैठ सत सत्य आई

साध जना की चर्ज कथा अष्टपति साधक संग मुखुजल हो तो साध संग मल सगलीक हो तो साधक संग मिटे अभिमान साधक संग प्रगटे सो ज्ञान साधक संग बुझे प्रभ ने रासा संग सबोतन बेरा साधक संग पाए नाम रतनो साधक संग एक ऊपर जतनो साधकी महिमा वरने कौन प्राणी नानक साधक शोभा ब्रह्मा है सम्मानी साधक संग गोचर मिलै साधक संग सदा पर फुलै साधक संगा वै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग सब की रेन साधक संग मनोहर बैन साधक संग न कतू धावै।

नमंते बिसरै सा संग सर पर निस्तर साधिक संग लगे भ्रम मीठा साधु कै संकट कर डीठा सा संग पै आज्ञाकारी साध संगत पै हमारी।

ब्रह्म ज्ञानी क्या मनो प्रकाश जैसे तारे ऊपर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी क्या मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी क्या नहीं अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे ऊंचा मन अपने सबते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पै नान गिन प्रभाव करे, ब्रह्म ज्ञानी सल कीरीतनात्म रस, ब्रह्म ज्ञानी जीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर महया, ब्रह्म ज्ञानी तिकश बुराना पहया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी।

ज्ञानी क्यों हुए सो भला ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सकल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपा सकल संसार। ब्रह्म ज्ञानी क्या क्या रंग ब्रह्म ज्ञानी क्या बसया प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी के नाम प्रवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी ओम बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी के नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक।

ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी को खोजा मे सर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन मा है, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा दे सा, ब्रह्म ज्ञानी का कथे ना जाए अदाखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर, ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखान है, ब्रह्म ज्ञानी की

ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी।

सोयस्पति करुण क्राउन करणे जोग ज्योतिष भाव सोई हो किन में था था पुनरांतने किस बार आवार हुक्मे दार द्रहावे हुक्मे विजय कुन समावे हुक्मे उच निज बेहार कुन क्रंग प्रकार कर कर देखे अपनी बड़ियाई नानक सब मेरे समावे प्रभावे मानु गुद पावे प्रभावे ता पात्र त्रावे प्रभावे शास्त्र राखे प्रभावे ता और गुण पाखे प्रभावे ता पद हरे आप करे अपन विचार दुआसरे के आप स्वामी खिले विकसेंत्र जामी जो पाव सुकार करावे नानक दृष्टि अरुण आवे कहो मनुखते क्या हुए आवे ज्योतिष भावे सोई करावे उसके आत्मविता सब कुछ लय ज्योतिष भावे सोई करे अणजानत विख्या मेरा चय जय जानते अपने बचे पर मैं पुला दा दिसावे नुख में चार खुन फिरे आवे कर कृपा से अपनी भगत दे नानक ते जन्ना मिले अखिन मैं निज कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवार जाका दृश्य कछु न आवे तुस तत्काल दा दिस प्रगटावे जाको अपनी कर बख्शी ताका लेखन गण जगदीश जीव बिन सब दिस की रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनते आप बनाई नानक जी वे देख बुढ़ाई इसका बल नहीं साथ कर्म क्रम सर्व को ना लाग्ञाकारी बपरा जीव ज्योतिष भावे सोई फुणती कहूँ उच निज मैं बसा कहूँ सो घर खरंग हसा कहूँ ने चंद व्यवहार कहूँ उपकाश प्यार कहूँ बेता ब्रह्म विचार नानक क्या मिला नहार कहूँ निर कर बोपात कहूँ सो रह दिन रात कहूँ मां क्रोध करा कहूँ सर्व की उतरवार कहूँ हो बैपड़ राजा कहूँ पिखार निज का साजा कहूँ आप कीर्त मैं आवे कहूँ भला भला कहा मैं जो पर राखे तिवी राय गुरु प्रसाद नानक सज गए कहूँ हो पंडित गृह के आन कहूँ मोहन तार डावे ते आन कबू तार तीर्थ नान कहूँ सत साध मुख्य आन कबू कीर्त हस्त तंग जी आन कहूँ जौन परमे परमैया

संत के दुख निवारता कटाए, संत के दुख जम तने छुटाए, संत के दुख सुख सब जाए, संत के दुख न क्रम पाए, संत के दुखन मातो मिलीन, संत के दुख सोबात हीन, संत के तिग रख न कोय, संत के दुख दान बरसोए, संत कृपाल कृपा जय करे, नानक संत संग दुख भी धरे, संत के दुखन तेम गुप होवे, संतन के दुखन काग जुलवे, संतन के दुखन सर्व जन पाए, संत के दुखन त्रिक जुन करमाए, संतन के दुखन तिस न मिचले, संत के दुखन सब को चले, संत के दुखन ते सब जाए, संत के दुखन इचन साथ, संत दुख की गाथा को नाए, नानक संत पावे तो भी गत पाए, संत का निंदक मां दताई, संत का निंदक खंडक न पाई, संत का निंदक मां ते आरा, संत का परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखी हर दीन, संत का निंदक को सर्व रोग, संत का निंदक को सदा बिजोग, संत निंदा दुख में दुख, नानक संत भावत उसका भी होय मोख, संत का दुखी सदा पवित, संत का दुखी किसे का निमित, संत के दुखी गोड़ान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे, संत का दुखी मांकार, संत का दुखी सदा विकार, संत का दुखी जन्म मरे, संत के दुख न सुख ते टरे, संत के दुखी को न ठाए, नानक संत भावत तले मिलाए, संत का दुखी अद भी टूटे, संत का दुखी किते काज न पहुंचे, संत के दुखी ध्यान परमाए, संत का दुखी उजड़ पाए, संत का दुखी अंतर तिथो था, जो सासुन मृत की लो था, संत के दुखी जड़ सिनाए, अपन बीजा पे खाए, संत के दुखी गुण राखन हार, नानक संत बातों ने विहार, संत का दुखी उम्र लाए, जो जल भिनु मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजे, जो पाव कोई दिन त्रापे, संत का दुखी चुटे के लै, जो मुबारत लिखे तुम्हारे दुहेला, संत का दुखी धर्म तरह, संत का दुख समिथ्या कैद, कीर्तन का तुरी वै, नानक ज्योति स्वभाव सोए थिया, संत का दुखी भी प्रभु हो जाए, संत का दुखी को दरगाह में सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई, संत का दुखी न मरण जवाइए, संत के दुखी पूजने आसा, संत दुख चले निराशा, संत का दुख न तिष्ठे कोई, जा स्वभाव तैसा कोई हो, भया कीर्तन मेटे कोई, नानक जाने सच्चा सोए, सब कर तिसके करने आर, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की स्तुति करो दंडाते, तिसे ध्याओ साध गिरा, सब कुछ वरते तिसका किया, जैसा करे तैसा गोथिए, अपना खेलाव करने यार, दूसर कौन कह विचार, जिन्हों कृपा करे तिसे अपन नाम दे, बड़ भागी नानक दंस।

जाय सुभाज मानव की टेक वृत्ति सब जानते उनके के भगवान जिसका दिए रहेगा बण तजना लाग गया मारे राखे को आप मानव के बिना ही हाथ जिसका हुक्म उस कोए जिसका नाम रख कंठ पुरोए सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए नानक बिघन लागे को सद मन में कर निंकार करमन मेरे सद व्यवहार निर्मल सुनाम रुपये सदा सोए ला कर ले जीव नैनो बेग ठाकुर का रंग साध संग बिन से सब संग है चरण चलो मार गोबिंद मिटे पाप जपे अरबिंद कर हर कर्म सरवण हर कथा हर दुर्गे नानक जन मथा बड़ भागी ते जन जग मैं सदा सदार के गुण गाय राम नाम जो करे विचार से धनवंत गणित संसार मन तन मुख बुलैर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एक एक पछाने तुत कियो सो जी जान नाम संग जिसका मन माने नानक तिने निरंजन जाने गुरु प्रसाद अपने आप सूझे तिसकी जानो तिस न बूझे सात संग हर हर जस कहत सर्वक त्यो रोग त्यार जन रह त्यान तिन कीर्तन के उख्यान किस समय सोए निर्वाण एक उपरदेशन की आशा तिसकी घटी जम की फासा पार मन किस मन भूख नानक तिस न लाग गए दो जिसको वार परमंच दे आवै सो सं सोला नहीं डुलावे जिस पर अपना कृपा करे सो सेव को किस ते डरे जैसा सा तैसा दिशा अपनी कर में आप समाया सोद सोद सोद सीजिया गुरु प्रसाद ता सब उजिया जब देखो तब सब कुछ मूल नानक सुख सुखम सोए स्थूल नख जन्मे नख सिमरे आपन चलते आप ही करें आउन जाउन दृष्ट दृष्ट अज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल में आप अणक जुग रहे थाप थाप अवनासी ना ही किस कारण धारण धारे ब्रह्मांड अलग फे पुर प्रताप आप जपाए तनानक जाप जिन प्रभ जाता सो सो बावंत सगुण संसार उदय धनवंत प्रभु के सेव सो उदान प्रभु के सेव दो विशाल आपे मेरे लय कृपाल गुर का शब्द जप है निहाल उनकी सेवा सोई लागे सुनु कृपा करे बड़ भाग है नाम जपत भाव विश्राम नानक तिन पुरो को उत्तम कर मान जो कुछ करे प्रभु के रंग सदा सब से हर संग है सह सुभाय सोय करण हर पछाणे सोए प्रभु का किया जन मीर लगाना जैसा सा तैसा दिशा न जिस तब जे तिस माय समाय सुख दान उनहु गुणे आपस को आप दीनो मार नानु प्रभु जने को जान सलोक सर्व कला भरपूर प्रभु था जन नहार जा का सिमरण दरिया नानक तिस बलहार अष्टपदी टूटी गणन हर गोपाल सर्व जी आपे प्रताप सगल जिंदा सिमन माय तिस ते वीरता कोई नाय रेमण मेरे सदार जा भवनासी प्रभु आपे आपे अपन किया कुछ नाय जसो प्राणी लोचै कोय तिसमें ना इतरे किस काम गत नानक जापे करना भूवन तो नाही मोहे प्रभु की जोत सकल घट सो है धनवंता क्या को कर बैन सब की तिसका दिया दरवे असुरा जे को कहा प्रभु की कला बिना कहता जे को होय बह दातार तिस दिन हर जाने का वार जिस गुरु प्रसाद टूटे रोग नानक सोजन सदा रोग है जो मंदिर को थामे थमण तो गुरु का शब्द मणे थमण जो पाखा नव चढ़त रहे प्राणी गुरु चरण लगत निस्तर जो अंधकार दीपक वरगास गुर दर्शन देख मनो विकास जो माओ ध्यान मुबारक पावे तो साधु संग मिल जोत भटा तीन संत

नाम जब हृदय माए नारायण का सती कर जाए जिस वकर कुलैन तू आया राम नाम संतन कर पाए तज मान ले मन मोल राम नाम हृदय मैं तोल लाद खेब संत संचाले वर्त अवख्या जंजाल तन तन कह सब को मुख जल हर दल कह सोए यह वपार बिरला वपारे नानक ता के सत बलहारे चरण साध के तोय तो पियो और साध को अपना जियो साध की दूर करो इसनान साध प्रजय कुरबान साध सवण भागी भाई साध संगर कीर्तन गाई अनेक बिगंते साधु राके अर गुण गाय मृत रचा के उड़ के संत दरे सर सोग नानक ते पाए मृत को जुआरन हर भूखे को देवत धार सरन दान जाके दृष्टि माए प्रोड़ के कर लय न पाए सब की तिस गाव करने जोग तिस बंधु सुर हो न हो जब जन सदा सदा दिन दानी सब तो निर्मल करनी कर कृपा जिस को नाम दिया नानक सुय निर्मल थिया जा

सचिद सच अकार सच वर्ते सच अपसार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता। श्लोक रूप न रेख न रंग किछ त्रै गुण ते प्रभिन्न तिसे भुजाए नानका जिस हुआ सो प्रसन्न अश्वति। अविनाशी ब्रह्मन में राख मानु की तू प्री त्याग तिस्ते परिणय किस को सर्वरंतर एक सोय आपे बिना आपे दाना गैर कबीर गहिर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर को बिंद कृपा ध्यान जल बख्शान दे सातरे की चरणी पाव नानक के मन अन्ना मन सपूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग। हरण परम जग ने त्रिफोर तिसका मंत्र जाने हो रे अण ध्रुव मंगल सजा के सर्व तोगुणी करता राज में राज योग में जोगी तब में तिव सर किस में भोगी तय तय भक्त सुख पाए नानक तिस भुख का नियंत्र न पाए। जाके लीला की मत नाय सगल देव हरे उगाए पिता के जन्म को जाने पू सगल प्रोही अपने सोत सुमत के अंत अन जिंद जनदास नाम ते आवे सह तय गुण में जाको उरमाए जन्म मेरे फिर आवे जाए। ऊच नीच तिसके स्थान जैसे नावे तैसा नानक दान नाना रुख नाना जाके रंग नाना भी क्रय करंग नाना विधि किन विस्तार परुणा से एक अंकार नाना चल खरे किन माए पूरे पूर्ण सब उठाए नाना विधि कर बणत बनाए अपनी कीमत आपे पाए सब कर दिसके सब दिसके ठाव जब जब जीवे नान कर नाव नाम कधारे सगले जंत नाम कधारे खंड ब्रह्मांड नाम कधारे समृत भेद पुराण नाम कधारे सुनन ज्ञान त्या नाम कधारे का अस्पताल नाम कधारे सगले कर नाम कधारे पुरियां सब फम नाम के संगतरे संसार कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सोजन गत पाए रूप साजा कर सत दान पुरख सत केवल प्रदान करतूत सत साजा की बाणी सत पुरख समाज समाणी सतकर्म जा की रचना सत मूह सत सत उत्पत सतकर्णी निर्मल निर्मल जिस जा तिस सफली सतनाम प्रभु का सुखदाय विश्वास सत नानक गुरते पाए सत बजन सत उदेश सत तेज जन जागर दे प्रोय सत नृत पूजे दे गोय नाम जपता की कत होए आप सत किया सब साते आपे जाने अपने मित गाते जिसके सिर सु करण हार उन बूझ करत विचार करते कि मित न कह जाने किया नानक ज्योतिष पावे सो वर्तिया विषम विषम भय समाज जिन पूजा दे सह स्वात प्रभु के रंग राज जन है गुरु के विषम पदार्थ लय दाते दु काट नार जा के संग तरे संसार जन का सेवक सोड़ फागी जन के संग लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुरु प्रसाद नानक कुल पावे सलोक आदि सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपद चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत वेखनहार नाम सत सत अवनहार आप सत सत सब धारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभुक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुजनहार को सत सब होए नानक सत सत प्रभु सोए सत स्वरूप मान्या करण कराउ तिन मूल विशाने जागर देव समास प्रवाया तत् ज्ञान तिस्मान भुगटाए पै ते निर्भय वसाना जिस देव जद समाय समान वस्त मान ले वस्त कढाई ताको बिना कह न जाए पूजे पूजन हार विवेक नारायण मिले नानक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक मन प्रतीत ठाकुर के सेवक निर्मरित ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम के रंग सेवक प्रभु पाल नारा सेवक ही राख निरंकार सो सेवक जिस दया प्रभु तारे नानक सो सेवक साथ साथ समारे अपने जन का परदा टाके अपने सब की सरपा राख अपने दास को देव उड़ाए अपने सेवक को नाम छुपाए अपने सेवक की आप राखे ताकि कद में कोई न लाखे प्रभु के सेवक को कण पहुंचे प्रभु के सेवक पूछते उच्चे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दास सकता है निकी की रीमा कर राखे भसम करे लश्कर को लाखे जिसका शासन करते आप ताको राख दे कर हाथ मानस जतन करतव पात इसके कर्तव्य वृथ जात मारने राखे अवरण कोय सर्व जिया का राखा सोय काहे सोच करे रे प्राणी जब नान कुर वल खुड़ानी बारंबार बार पर जप पिए पिए अमृत मन तंदर फिए नाम तंजन गुरु को पाया तिसके चरण दृष्टा नाम तन नाम रूप रंग नामो सु कर नाम का संग नाम राज जो जंत्र बताने मन तन नाम है नाम समाने उठत बैठ सोत नाम कहो नानक जन के सदगाम बोलो जह जे बा दिन रात प्रभु ने जन की नींद आद करे भक्त आत्म के ताए प्रभु ने सुर समाए जो हो आओ सो जाने प्रभु अपने का हुक्म जाने तिसकी महिमा कौन वखानो तिसका गुण कह न जान
आठ पर हजूर है कौन ऑक्सीजन पूरे मन मेरे तिन की ओढ़ ले मन तन अपना तिन जन दे जिन जन अपना प्रभु बुझाता सुजन सर्व सुख का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर सब पाप मिटावे और सियाण सगली सार तिस जन को सेवा लागे आवन जान होवे तेरा नानक तिस जन के पूजो सत पैरा सलोक सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाव तिसका संग सिख उदर नानक हर गुण गाव अश्वधि सतगुर सिखी कर प्रताप सेव को गुरु सदा दया सिखी गुरु दुरमत मल रे गुरु बचनी हर नाम श्रे सतगुर सिखे बंधन काटे गुरु का सिख करते अटे सतगुर सिखो नाम तन दया गुरु का सिख गुड़बागी है सतगुर सिख अल तल सवारे नानक सतगुर सिखो जी नाल समारे गुरु के ग्रह से गुजोरा गुरु की आज्ञा मन में सह आप सको कर कछुन जनावे हर हर नाम दे सत आवे मन बचा सतगुरु के पास सेव के कार जरास सेवा करत हो नेकामी तिसको होत प्राप स्वामी अपनी कृपा से आप करे नानक सो सेव गुरु की मत ले बीस विश्व है गुरु का मन माने सो सेव परमेश्वर की गजाने सो सतगुरु जी हृदय हरनावन कुबार गुरु को बल जाम सर्वनिधान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन में पार वेख अपने कश परम सहसैन बलैन जाइए नानक ऐसा गुरु भागी भाई सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत पेट तो संग्राम गुण रवि पार ब्रह्म की दरगे गवे सुन कर वचन करने अखाने मन संतोख आत्म बतयाने पूरा गुरु रखियो जा का मंत्र अमर दृष्ट वेख्यो संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिज लय मिलाए जिह पाए कुछ तत् अनेक सतपुरुष पूर्ण बवे काहू बोल न पहुंचत पुराने गुण गोचर गुण निर्वाण निरहार निर्वैर सुखदायता की कीमत किन्ने न पाए एक नानक भगत बंधन करै चरण कमल हृदय सिमरै सतबलहारी सतगुरु अपने नानक जिस प्रसाद है सब रोज में अरस पावे जन को अमृत भी अमृत सोहे उस पुर का ना एक बिना जाके मन पकड़े गुंता से आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेव को दे मुँह माया के संग न ले मन में रखे हर हरे कंधकार दीप पुरगा से नानक भ्रमो दुख तय तेना से तब तो मैं ठंड करता है नया दुख नाठे भाई जन मन के मिटे दे से साधु के पूर्ण उपदेश हो चुका निर्भय वसे सगल व्याल मन ते खै न से जिसका साधन कृपा तारी सा संग जब नाम मुरारी चित पाए चुके भ्रम गावन सुन नानक हर हर जस सरगुण निर्गुण आप सरगुण पियो इकड़ा तार जिन सगली मोहे अपने चर प्रभाव बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिंदु जा नाई को सरम निरंतर एको सोए ओत बोध रवे रूप रंग भय प्रगा साध के संग रच रचना अपनी कल धारी अनक बार नानक बलहारी सलोक साथ न चाल बिन भजन विख्या सगली सार हर हर नाम कुमामना नानक तन सारस्वति समझना मिल गुरु विचार एक सिमरना उद्धार उपाव स्वामी विसारो चरण करुण मैं अवतार कारण कारण सो प्रभु समरा दृढ़ कर गहो नाम हर बाते तन संचो भगवान समझना कर निर्मल मन एक आसरा कुमन माए सर्व रूप नानक मिल जाए जिस तन को चार गुण उतावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुकुण बाछ में सो सुख साधु संग करे जिस सोभा को करे भली करनी साहु सो बजहर की।

जात विदन जाते प्रवदान कर कृपा देव हर नाम साधना की मंगो तूर पार ब्रह्मे श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभु के गुण का सात सात प्रभु तुम दयाव चरण कम सो लागे प्रीत प्रभु के भगत करो प्रभु की नित नीत हे कोटि को धार नानक मंगे नाम प्रसार प्रभु की दृष्टमा सुको यार विरला कोय जिन जाके आसे जंत्र बताने पूर्ण पुरुष ने डोला ने सुबर परे प्रेम रास रंग बजे जाओ साथ गए संग परे शरण सब त्याग अंतर पर गा संत ने विला गुड़ फागी जे पे प्रो सोए नानक नाम ते सुकोय सेवक मन सा पूरी भाई सतगुर निर्मल उतले जन को प्रभु हो दया सेवक नु सदा निहाल वंदन काल मुख जन भया जन मरण दुख प्रम गए चुपनी सरदा सा पूरी राव रहा सत्संग हजूरी जिसका साधन लिया मिला है नानक भक्ति नाम समाय सो को सर काल न पाने सो को सर जे किया जाने सो क्यों चरण सब कोई दिया सो को सर जीवन दिया सो को सर जगण में राखे गुरु प्रसाद को बिड़ा लाख सो को सर जे बिकते काटे जन्म जन्म का टूटा काटे गुरु पुरे ता ते बजाया प्रभ अपना नानक जन ध्याए साधन संत गुरु काम यान त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख भाव आप जपो हर नाम जपाव भगत पाए तरह संसार बिन भक्ति दिनो सिसार सर्व कल्याण सुगुण दिनाम बुढ़ जात पाए विश्राम सकल दो का उतना स्नान नाम जपो कुंता सुपजीत प्रीत ब्रह्म राचाव मन तनंतरे स्वाव नेत्रो वेग दर्शु गए मन विखे सा चन तोय भक्त ना के मन तन रंग बिरला को पावे संग एक वस्ती जे कर्मया गुरु प्रसाद नाम जपलया ताकि उमा कही न जाए नान ग्रह सर्व समाय प्रभक्षण दीन दयाल भगत सुसदा कृपाल नाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व प्राकृत व्रतपाल हाथ गुरु कारण करताल भगत ना के प्राण धार जो जुज पैसो है पुनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुण यार नीच जा नानक तुमरी शरण पुरुष भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मुख पाए निम करके गुण गाय अनुग्राज भो उड़िया यार के नाम की कथा मन पाए भो भोजन का पसुंगी रसन जपति हर हर नीत भले सो करणी सो बतन मंत हृदय से पूर्ण गुरु मन सा संग प्रभु दे निवास सर्व सुंग नान कुल गास लोक है।

बाछत फल लइए रहाओ। आवो संत प्राण सुख दाते सिमर प्रभ विनासी, अनाथ नाथ दीन दुख पंजन पूर रहो कटवासी। गावत सुनत सुनावत शरदा हरस पी वड पागे, कल कलेश मिटे सब तंते राम नाम लिव जागे। काम क्रोध झूठ तज निंदा हर सिमरन बंधन टूटे, मोह मगन अहम बुद्ध।

मल्हारी गुरुदेव चरण जाके संग पार ब्रह्म ते आइये उपदेश हमारी गत करन रहाओ दुख रोग पै सगल बिनासे जो आवे हर संत शरण आप जपे अवरह नाम जपावे बड़ पाग तारन तरन जाको मंत्र उतारे सहसा ऊने को सुबर परन हर दासन की आज्ञा मानत ते नाही फुन गर्भ परन पवितन की टहल कमावत गावत दुख काटे जा ताके जन्म मरन जाको पयो कृपाल बीठला तिन हर हर अजर जरन हर रस अगाने सहज समाने मुक्ते नाही जात बरन गुर प्रसाद नानक संतोखे नाम प्रभु जप जप उदरन सारंग महला पंजवा गायो संतन चरण मूलो मूरलो माथा गायो री मैं वाहिगुरु गायो री मैं गुणनिध मंगल गायो पले संजोग पले दिन अवसर जो गोजियो गोपाल रिजायो रहाओ संत चरण मोरलो माथा हमरे मस्तक संत तरे हाथा संत मंत्र मोरलो।

कहो नानक सुख सहज आनंदा, खोल पीत मिले परमानंदा। सारंग महला पंजवा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

प्रीत बैरागी कद पावो हर दरसाई जतन करो ए मन नहीं तीरे को है रे संत मिलाई जप तप संजम पुन सब होम तिस अर्पो सब सुख जाई एक निमख प्रिय दर्श दिखावे ते संतन के बल जाई करो निखोरा बहुत

पागल त्यागो जो प्रिय बात सुनाई। देख चरित्र पई हाँ बिस्मन गुर सतगुर पुरख मिलाई। प्रभ रंग दयाल मोहि ग्रह में पाया जन नानक तिपत बुझाई। नानक तपत बुझाई सारंग महला पंजवा। रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही। नरक कोर में उर्द तप करता निमक निमक गुण।

तो लागो अनठाई, करे बुराई ठगाई दिन रैन, ने फल कर्म कमाई कण नाही, तोहे गाहन लागे ताए ताए दुख पाई। मिथ्या संग कूड़ लपटायो, उर्ज पर्यो कुस माही, तर्म राय जब पकरस बवरे, तो काल मुखा उठ जाई। सो मिलिया जो प्रभु मिलाया, जिस मस्तक लेख लिखाई, कहो नानक तिन जन बलहारी, जो अलप रहे मन माही। सारंग महला पंजवा। क्यों जीवन प्रीतम बिन माई,

प्रभ मंगल गुण गाय, चरण संतन के माथे मेरे ऊपर, चरण संतन के माथे मेरे ऊपर नैनो तुर बछाई, जय प्रसाद मिले प्रभ नानक बल बल।

जाई आठ पहर अपना प्रभ सिमरन बड़ पागी हर पाई रहाओ। पलो पलो कबीर दास दासन को उत्तम सैन जन नाई, ऊंच ते ऊंच नाम देव समदर्शी रविदास ठाकुर बन आई। जियो पिंड तन तन साधन का एहो मन संत रे नाई, संत प्रताप परम सबना से नानक मिले बसाई। सारंग महला पंजवा मनोरथ पूरे सतगुर आप, सगल पदार्थ सिमरन जाके आठ पहर मेरे मन जाप रहाओ। अमृत नाम स्वामी तेरा जो पीवे तिस ही तृप्तास, जन्म जन्म के किल बिखनासे आगे दरगे होए खलास। शरण तुम्हारी आयो करते पार ब्रह्म पूरन अविनाश, कर कृपा तेरे चरण ते आओ नानक।

प्राणपति हर समता सारंग महल्ला पंजवा। मेरा मन एक ही प्रिय मांगे पेख आयो सर्ब थान देश। प्रिय रोम न समसर लागे रहाओ मैं नीरे अनिक ओजन बहु बिंजन। तिन स्यों दृष्ट ना करे रोचांगे हर रस चाखे।

रज रजन सबाई जंगा रहाओ, हर सेवो हर हृदय बसावो, हर पाया सत्संगा, ऐसो मिल्यो मनोरथ प्रीतम, सुख पाए मुख मंगा, प्रे अपना गुर बस कर दीना, भोग्यो भोग।

कुर्बानी बचन नाद मेरे श्रवनो पूरे देहा प्रिय संग समानी रहाओ छूटर ना छूटर छूटर ते गुर कीनी सुहागन हर पायो सुगड़ सुजानी जह कर में बैसन नहीं पावत जह कर में बैसन नहीं पावत सो थान मिले ओ बासानी उनके बस आयो भगत बचल जिन राखी आन संतानी कहो नानक हर संग मन मान्या सब चूकी कान लुकानी सारंग महला पंजवा अब मेरो पंचा ते संग टूटा दर्शन देख पए अन दर्शन देख पए मन आनंद गुर कृपा ते छूटा रहाओ।

पाले परिया अमूल लाख लाल अखूटा, जिन नानक गुर कृपा तारी तो मन में हर रस फूटा। सारंग महला पंजवा, अब मेरो ठाकुर स्यों मन लीना, प्राण दान गुर पूरे दियो और जायो ज्यों जल मीना। रहाओ काम क्रोध लोभ मद मत्सर, एह अर्प सगल दान कीना। मंत्र दृढ़ाए हर औखद गुर दियो, त्यों मिल्यो सगल प्रवीना।

कोट ब्रह्म ब्रह्मंड उदारे रहाओ। करे अरदास बहुत बेनती, निमख निमख सामा रहे। ओहो कृपाल दीन

दरस देख सुख पाया, सब पूरन होई आसा। सारंग महला पंजवा, चरण गोविंद मार्ग सुहावा, आन मार्ग जेते किछ ताइए, ते तो ही दुख हावा रहाओ। नेत्र पुनीत पय दरस पेखे, हस्त पुनीत टहलावा, हृदय पुनीत हृदय हर बस्यो, मस्त पुनीत संत तुरावा। सर्ब निदान नाम हर हर कै, जिस कर्म लिखिया तिन पावा। जिन नानक को गुर पूरा पेट्यो, सुख सहजे आनंद बिहावा। सारंग महला पंजवा, ते आयो अंत बार नाम सखा, जह मात पिता सुत पाई न पहुँचे, तहाँ तहाँ तू रखा रहाओ। अंत कूप ग्रह मह तिन सिमरियो, जिस मस्तक लेख लिखा। खुले बंधन मुक्त गुर कीनी, सब तू है तू ही दिखा। अमृत नाम पिया मन तृप्ताया, आगाने रसन चखा। कहो नानक सुख सहज में पाया, गुर लाही सगल।

जो सुख सागर मैं पाया। सारंग महला पंजवा, मेरे मन शब्द लगो गुर मीठा, घुल्यो करम पयो परगासा, कट कट हर हर डीठा रहाओ, पार ब्रह्म आजो नी संबो, सर्व थान कट बीठा, पयो परापत अमृत नामा, बल बल चरण बल बल प्रभ चरणीठा। सत्संगत की रेण जो मुख लागी, सत्संगत की रेण मुख लागी, किए सगल तीरथ मजनीठा, कहु नारंग रंग चलूल पए हैं, हर रंग न लहे मजीठा। सारंग महला पंजवा, हर हर नाम दियो गुर साथे, निमख बचन प्रभ हीरे बसेओ, सगल भूख मेरी लाथे रहाओ, कृपा निदान गुण नायक ठाकुर, सुख समूह सब नाथे, एक आस मोह तेरी स्वामी, और द्वितीय आस बिराथे, नैन त्रिपता।

झूठ ठगौरी पाई। पयो दयाल कृपाल दुख हरता, संतन स्यों बन आई। सगल निदान करे मैं पाए, कहो नानक जोत समाई। सारंग महला पंजवा। ओहों प्रिय प्रीत चीत कह लरिया, जो लो बचन दियो मेरे सतगुर, तो मैं साज सिंगरिया रहाओ। हम पूलो तुम सदा अपूला, हम पतित तुम पतित उदरिया। हम नीच बिरख तुम मैं लागर, लाज संग संग बसरिया। तुम गंभीर तीर उपकारी, हम क्या बपरे जंतरिया। गुर कृपाल नानक हर मिलो, तो मेरी सुख सिजरिया। सारंग महला पंजवा। मन ओए दिनस तन परवाना, संग सफल ते करी संजोग सुहावे। सतगुर संग ज्ञाना रहाओ। तन सुहाग तन सुहागा, तन देत जिन माना। एह तन तुमरा सग्रह तन तुमरा, कियो कियो कुर्बाना। कोट लाख राज सुख पाए, एक निमक पेख दृष्टाना। जो कहो मुखो सेवक एह बैसी है, सुख नानक अंत न जाना। सारंग महला पंजवा। अब मेरो सहसा दुख गया, और उपाव सगल त्याग छोड़े। सतगुर शरण पिया रहाओ। सगल निद कारज सब सबरे, अह रोग सगल ही खया। कोट पराध खिन में खो पई है, कोट पराध खिन में खो पई है। गुर मिल हर हर कहे।

इत उत सदा सहाई, मन मोहन मेरे जी को प्यारो, कावन कहाँ गुन गाई रहाओ। खेल खिलावे लाड लडावे, सदा सदा अनदाई, प्रतपाले बारक की न्याई, जैसे मात पिताई। तिस बिन निमक नहीं रह सकिए बिसरना, तिस बिन निमक नहीं रह सकिए बिसरना, कब हूँ जाई। कहु नानक मिल सत्संगत ते, मगन पे लिवलाई। सारंग महला पंजवा। सारंग महला पंजवा। अपना मीत स्वामी गाइये, आसना अवर काहू की कीजै, सुखदाता प्रभ त्याइये रहाओ। सुख मंगल कल्याण जिसे कर, तिस ही सरनी पाइये, तिसे त्याग मानुख जे सेवो, तो लाज लाज लोन हो जाइये। एक ओट पकड़ी ठाकुर की, गुरमिल मत बुद पाइये, गुण निदान नानक प्रभ मिलया, सगल चूकी मोहताई है। सारंग महला पंजवा। ओट सतानी प्रभ जियो मेरे, दृष्ट ना लावो अवर काहू को, मान महत प्रभ तेरे रहाओ। अंगीकार कियो प्रभ अपने, काड लिया बिख के रह, अमृत नाम औखद मुख दीनो, जाए पया गुर पैरे। कवन उपमा कहो एक मुख, निर्गुण के दातार है, काट सिलक जो अपना कीनो, नानक सुख कनीर है। सारंग महला पंजवा। प्रभ सिमरत दुख बिनासी, पयो कृपाल जी सुखदाता, होई सगल खलासी रहाओ। अवर न को सूजे प्रभ बिन, कहो को किस पह जासी, जियो जियो जानो तो राखो ठाकुर, सब किछ तुम ही।

मेरो मन जतकत तुम्हें समार है। हम बारक दीन पिता प्रभ मेरे ज्यों जानो त्यों पारे रहाओ। जब भूखो तब भोजन मांगे अगाए सुख संगारे। जब आरोग तब तुम संग बस तो छुटकत होए रावारे। कवन बसेरो दास दासन को थाप्यो थापन हारे। नाम न बिसरे तब जीवन पाइये बिनती नानक।

लाडले सहज सहज गुन गायो रहाओ, गुर बचनात कमात कृपाते बहर न कतहु तायो, रहत उपाद समाद सुख आसन भगत वछल ग्रह पायो, नाद विनोद कोड आनंदा सहजे सहज समायो, करना आप करावन आपे कहु नानक आप आपायो। सारंग महला पंजवा, अमृत नाम मने आधारो, जिन दिया तिस कै कुर्बाने गुरु पूरे नमस्कारो, रहाओ बुझी तृष्णा सहज सुहेला काम क्रोध बिख जारो, आए न जाए बसे एह ठाहर जह आसन निरंकारो, एक क्या प्रगट एक क्या गुप्ता एक क्या तुंदुकारो, आद मद अंत प्रभसोई कह नानक साच विचारो। सारंग महला पंजवा, बिन प्रभ रहन न जाई करी सर्व सुख ताहु के पूरन जाके सुख है हरी, रहाओ मंगल रूप प्राण जीवन तन सिमरत अनंद कना, बड़ समरत सदा सदसंगे गुण रसना कवन पना, थान पवित्रा मान पवित्रा पवित्र सुनन कहन हारे, कहो नानक ते पवन पवित्रा

दाता, तुम्हें खजीना, तुम्हें जरीना, तुम ही माणक लाला, तुम्हें पार जात गुरते पाए, तौ नानक पए निहाला। सारंग महला पंजवा। जाहूं काहूं अपनो ही चित आवै, जो काहूं को चेरे होवत, जो काहूं को चेरो होवत, ठाकुर ही पह जावे रहाओ। अपने पह दुख, अपने पह सूखा, अपने ही पह दीर्था, अपने पह मान, अपने पह ताना, अपने ही पह अर्था, किन ही राज जो बंतन मिलखा, किन ही बाप महतारी, सर्ब थोक नानक गुर पाई, पूरन आस हमारी। सारंग महला पंजवा। झूठो मायो को मधमान, त्रोह मोह दूर कर बपरे, संग गोपाल जान रहाओ। मिथ्या राज जोबन और उमरे, मीर मलक और खान, मिथ्या कापर सुगंध चतुराई, मिथ्या भोजन पान, दीन बंदरो दास दासरो, संतन की सारान, मांगो मांगो होए अचिंता, मिल नानक के हर प्राण। सारंग महला पंजवा। अपनी इतनी कछु न सारी, अनिक राज अनिक

साधक सिद्ध सगल की प्यारी, टूटे न काहू तोरी रहाओ, खट सास्तत उचरत रसनागर, तीरथ गवन न थोरी, पूजा चक्र बत्र नेम तपिया, ऊहा

पदार्थ जीता सारंग महला पंजवा। ठाकुर बिनती करन जन आयो सर्ब सुख आनंद सहज रस सुनत तुहारो नाओ सुनत तुहारो नायो रहाओ कृपा निदान सुख के सागर जस मह जस सब मह ताको छायो संत संग रंग तुम किए अपना आप दृष्टायो नैनो संग संतन की सेवा चरण चारी के सायो आठ पहर दर्शन संतन का सुख नानक एह पायो सारंग महला पंजवा। जाकी राम नाम लिव लागी सजन सुरिंद सुहेला सहजे सो कही है बड़ पागी रहाओ रहत विकार अलप माया ते अहो बोध बिख त्यागी दर्शन प्यास आस एक है की टेक ही है प्रिय लपागी अचिंत सोए जागन उठ बैसन अचिंत हस्त बैरागी कहो नानक जिन जगत ठगाना सो माया हर जन ठागी सारंग महला पंजवा। अब जन ऊपर को न पुकारे पुकारन को जो उद्यम करता सो पर पुकारन को जो उद्यम करता गुर परमेश्वर ता को मारे रहाओ निर्वैर संग वैर रचावे हर दरगह ओ हारे आद जुगाद प्रभ की वडियाई जन की पैज सवारे निर्भव पय सगल पौ मिटिया चरण कमल आधार है गुर के बचन जपियो नाओ नानक प्रगट पयो संसार है सारंग महला पंजवा। हर जन छोड़िया सगला आप ज्यो जानो तो राखो स्वामी पेख जीवा पर ताप रहाओ गुर उपदेश साध की संगत बिनस्यो सगल संताप मित्र सत्र पेखत समत विचार्यो सगल संपाखन जाप तपत पुजी शीतल आगाने सुन अनद विषम पय विषमाद।

गुरु पूरे बलिहारे, प्रगट प्रताप कियो नाम को, राखे राख नहारे रहाओ। निरपो पय सेवक दास अपने, सगले दुख बिदारे, आन उपाव त्यान जन सगले, चरण कमल रिद तारे, प्राण आधार मीत साजन, प्रभ एक ओंकारे, सबते ऊंच ठाकुर नानक का, बार बार नमस्कारे। सारंग महला पंजवा। बिन हर है को कहाँ बतावो, सुख समूह करुणा मैं करता, तिस प्रभ सदा त्यावो रहाओ। जाके सूत परोए जनता, तिस प्रभ का जस गावो, सिमर ठाकुर जिन सब किछ दीना, आन कहाँ पह जावो।

दुख नाठे सुख सहज समाए, आनंद आनंद गुण गाया वहां पकर काड़, लीने अपने ग्रह अंध भूप ते माया, कहो नानक गुर बंधन काटे बिछरत आन मिलाया। सारंग महला पंजवा, हर के नाम की गत ठांडी, वेद पुराण सिमरत।

सिमर सिमर स्वामी पय सीतल, दुख दर्द ब्रह्म हिरिया। जो जो तरयो पुरातन नवतन, भगत पाए हर देवा। नानक की बेनंती प्रभ जियो, मिले संत जन सेवा। सारंग महल्ला पंजवा, जीवे अमृत गुण हर गाओ। जीवे अमृत गुण हर गाओ, हर हर बोल कथा सुन हर की। उचरो हर को न।

होती नहीं कवन किछ करनी, ई है ओट इहां पाई, ई है ओट पाई मिल संत है, गोपाल एक की शरणी रहाओ, पंच दोक छिद्र इया तन में, बिखे ब्याद की करनी, आस अपार दिनस गण राखे, ग्रस्त जात बल जरनी, अनाथ नाथ दयाल सुख सागर, सर्व दोख पैहरनी, मन बाछत चितवत नानक दास, पेख जीवा प्रभ शरणी, सारंग महल्ला पंजवा, फीके हर के नाम बिन साध, अमृत रस कीर्तन हर गाय, अहनिस पूरन नाद रहाओ, सिमर सिमरत शांत महा सुख पाइए, मिट जाए सगल बिखाद, हर हर लाभ साध संग पाइए, कर ले आवो लाद, सब ते ऊंच ऊंच ते ऊंचो, अंत नहीं मर जाद, बरन न साको नानक महिमा, पेख रहे बिस्माद, सारंग महल्ला पंजवा, आयो सुनन परण को बाणी, नाम विसार लगे अनलालच, बिरथा जन्म पराणी रहाओ, समझ अचेत चेत मन मेरे, कथी संतन अकथ कहानी, लाभ लह हर हृदय अरादो, छुटके आवन जानी, उदर सकत सरा

साध संग जिन हर हर जप्यो नानक सो परवाना। सारंग महला पंजवा। हर हर संत जना की जीवन, बिखै रस भोग अमृत सुख सागर। हर नाम रा हर राम नाम रस पीवन रहाओ, संचन राम नाम तन रतना, मन तन पीतर सीवन। हर रंग रांग पए मन लाला, राम नाम रस खीवन। जियो मीना जल से उर जानो, राम नाम संग लीवन। नानक संत चातर की न्याई, हर बूंद पान सुख

काल, जब जम आए संगारे प्राणी, तब तुमरो कौन हवाल। राख ले हो दास अपने को, सदा सदा कृपाल।

निर्मल अस्थित हृदय अंतर पूजा प्राण को आधार। प्रभ दीन दयाल सुनो बेनती कृपा का कृपा अपनी तार। नाम निदान उचरो नित रसना नानक सब बलिहार। सारंग महला पंजवा हर के नाम हीन मत थोरी। सिमरत नाहे श्री तर ठाकुर मिलत अंध दुख कोरी। रहाओ

कर कृपा भगत रस दीजै, मन चखत प्रेम रस खोरी, नानक दास तेरी सरनाई, प्रभ बिन आन न होरी। सारंग महला पंजवा। चितवो वा अवसर मन माहे, होहे एकत्र मिलो संत साजन, गुण गोबिंद गाहे रहाओ, बिन हर भजन जेते काम करिए, तेते बिरथे जाए, पूरन परमानंद मन मीठो, तिस बिन दूसर नाहे, जप तप संजम कर्म सुख साधन, तुलना कछुए लाहे, चरण कमल नानक मन बेद्यो, चरण संग समाहे। सारंग महला पंजवा। मेरा प्रभ संगे अंतर जामी, आगे कुशल पाछे खेम सुखा, सिमरत नाम स्वामी रहाओ, साजन मीत सखा, हर मेरे गुण गोविंद हर राया, बिसर न जाए निमख हृदय ते, पूरे गुरु मिलाया, कर कृपा राखे दास अपने, जी जंत वस जाके, एका लिव पूरन परमेश्वर, पौ नहीं नानक ताके। सारंग महला पंजवा। जाके राम को बल होए, सगल मनोरथ पूरन ताहू कै, दुख न व्यापै कोई रहाओ, जो जन भगत दास नित प्रभ का, सुन जीवा तिस सोए, उदम करो दर्शन पेखन को, करम परापत होए। गुर प्रसादी दृष्ट निहारो, दूसर नाही कोए, दान देहो नानक अपने को, चरण जीवा संत तोए। सारंग महला पंजवा। जीवत राम के गुण गाए, करो कृपा गोपाल बीथले, बिसर न कभी जाए रहाओ, मन तन तन सब तुमरा स्वामी, आन न दूजी जाए, ज्यो त्यों राखे।

जन्म प्रमतो बह पाती थित नहीं कत हो पाई। पूरा सतगुर सहज न पेट्यो साकत आवे जाई। राख ले हो प्रभ समर्थ दाते तुम प्रभ अगम अपार। नानक दास तेरी शरणाई

गोविंद बिसरे कवन दुख गनिए, सुख नानक हर पद चीन, सारंग महला पंजवा। माई रई चरण है ओट गही, माई री चरण है ओट गही, दर्शन देख मेरा मन मोहयो, दुर्मत जात बही रहाओ। अगह अगात ऊंच अविनाशी, कीमत जाए न कही, जल थल पेख पेख मन बिकस्यो, पूर रहो सब मही। दीन दयाल प्रीतम मन मोहन, मिल सादे कीनो सही, सिमर सिमर जीवत हर नानक, जम की पीर ना फही। सारंग महला पंजवा। माई री मन मेरो मतवारो, पेख दयाल आनंद सुख पूरन, हर रस रपियो खुमारो रहाओ। निर्मल पय उजल

आठ पहर प्रभ के गुण गावह, पूर्ण शब्द विचार नानक दासन दास जन तेरा पुनः पुनः नमस्कार। सारंग महल्ला पंजवा। पोथी परमेश्वर का थान, साध संग गावे गुण गोविंद पूरन ब्रह्म ज्ञान। रहाऊ साधक सिद्ध सगल मुन लोचे बिरले लागे ध्यान।

पल बिसर नहीं मेरे करते एहो नानक मांगे दान। सारंग महला पंजवां बूठा सर्ब थाओ में हो आनंद मंगल गाओ हर जस पूरन प्रगटे उन्ने हो रहाओ। चार कुंट दै दिस जल निद ऊन थाओ ना के हो कृपा निद गोपाल पूरन जी दान सब देहो। सत सत हर सत स्वामी सत साध संगे हो सत ते जन जिन परतीत उपजी नानक नह पर में हो। सारंग महला पंजवा गोविंद जियो तू मेरे प्राण अदार साजन मीत सहाई तुम ही तू मेरो परवार रहाओ।

चलनी बप तराई सतगुर कबू डोलत नाही गुर नानक जपे दियारा सर्ब सुखा निद पाही सारंग महला पंजवा निभी नाम की सच पेख पेख निभी नाम की सच पेख लाभ हर

मन हर को अहलाद, साध संग गाए गुण गोबिंद, बिन सियो सब परमाद, डोरी लपट रही चरण संग, प्रम पै सगले खाद, एक आधार ना

कसबिना हाँ आन न जानो दुतिया पाओ न लोहो रहाओ त्याग गोपाल अवर जो करना ते बिखिया के खुहु दर्श प्यास मेरा मन मोहयो कांडी नरक ते तुहु शांत प्रसाद मिलो सुखदाता बिनसी हाँ मैं हुहु राम रंग राते दास नानक मौल्यो मन तन जुहु।

अमृत पियो नानक अन रस सब खार सारंग महला पंजवा ताते करण पलाहा करे महाविकार मोह मद मातो सिमरत नाहे हरे रहाओ साध संग जपते नारायण तिनके दोख जरे सफल देह तन ओय जन्मे प्रभ के संग रले चार पदार्थ अष्टदशा सिद्ध सब ऊपर साध पले नानक दास तूर जन बाच

रहाउ तू बेअंत पार ब्रह्म स्वामी गत तेरी जाए न लाखी चरण कमल प्रीत मन बेदया हर सर्बस अंतर राखी वेद पुराण सिमरत साधु जन ए बाणी रसना पाखी जप राम नाम नानक निस्तरिय और द्वितीया बिरथी

परे गोविंद की पाखी। जी जंत सगले त्रै मोहे बिन संता के न लाथी। नानक दास हर कीर्तन राता शब्द सुरत सच साखी। सारंग

हर हर जपत सर्व सुख पाए, बीचे ग्रस्त उदास रहाओ। कर कृपाली ने कर अपने उपजी दर्श प्यास, शांति संग मिल हर गुण गाए, बिनसी द्वितीया आस। महा उद्यान अटवी ते काढ़े मार्ग संत करे हो। देखत दर्श पाप सब नासे, हर नानक रतन लेहो। सारंग महला पंजवा मायरी, अरे ओ प्रेम की खोर, दर्शन रुचित प्यास मन सुंदर, सकत न कोई तोर। रहा प्राण मान पत पित सुत बंदप, सर्व हर सर्वस तन मोर। त्रिग शरीर अष्ट विष्टा कृम, बिन हर जानत होर। पयो कृपाल दीन दुख पंजन, परा पूर्वला जोर। नानक शरण कृपानिध, सागर भिनस्यो आन निहोर। सारंग महला पंजवा, नीकी राम की तुन सोए, चरण कमल अनूप स्वामी, जपत साधु।

सोए सार महला पंजवा हर के नाम की मत सार हर बिसर जो आन रच है मिथन सब विस्थार रहाओ साध संग पंज स्वामी पाप होवत खार चरनार बिंद बसाए हृदय बसे बहर जन्म ना मार कर अनुग्रह राख लीने एक नाम आधार दिन रहन सिमरत सदा नानक मुख उजल दरबार सार महला पंजवा मानी तू राम के दर मानी साध संग मिल हर गुण गाए बिनसी सब अभिमानी रहाओ तार अनुग्रह अपनी कर लीनी गुरमुख पूर ज्ञानी सर्व सुख आनंद कनेरे ठाकुर दर्स त्यानी निकट नवतन सदा सुहागन दह दिस साई जानी प्रिय रंग रंग रंग रति नारायण हर दिस कुरबानी सारंग महला पंजवा तो चरण आसरो ईसर

खात पीवत हस्त सोवत आदि बीति असार नरक उदर प्रमंत जलतो जन्मे की निसार पर द्रोह करत विकार निंदा पाप करत कर चार बिन सतगुर भूल।

संत राखे चरण कमल आधार, कर जोर नानक शरण आयो गोपाल पुरख अपार। सारंग महला पंजवा, कर छेवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद। शुभ बचन बोल गुण अमोल, किंकरी विकार देखरी विचार। गुर शब्द त्याय महल पाए, हर संग रंग करती महाकेल रहाओ। सुपनरी संसार मिथनी विस्थार सखी काए, मोहली प्रिय प्रीत हृदय मेल। सर्वरी प्रीत प्यार प्रभ सदारी दयार, काए आन आन रुचिए हर संग संग खचिए। जो साध संग पाए कहो नानक हर त्याए। अब रहे जमै मेल सा

दीप करते हर नाम तुल न लागे। राम दियार सुन दीन बेनती हर दरस नैन देखो जन नानक नाम मिष्ट लागे। सार महला पंजवा राम राम राम जपत रमत राम सहाय रहाओ संतन के चरण लाग। काम क्रोध लोभ त्यागे गो गुर गोपाल पय कृपाल लबद अपनी पाई। बिन से ब्रह्मोह अंत टूटे माया के बंद पूर्ण सर्वत्र ठाकुर नह को बैराई। स्वामी सो प्रसन्न पय नानक स्वामी सो प्रसन्न पय जन्म मरण दुख गए संतन के चरण लाग नानक।

कर कृपा जो सतगुर मिलियो मन मंदर में दीपक जलियो जीत हार की सोजी करी तो इस घर की तो इस घर की घर मानस जन्म अमोल है तो इस घर की कीमत परी।

जब इन किछ कर्म ने पेदा तब ते दुख दंड अर खेदा जब इन एको एकी बुझया तब ते इसनो सब किछ सूझया तब ते इसनो सब किछ सूझया।

कर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदर में दीपक जलियो, जीत हार की सोजी करी, तो इस घर की घर मानस जन्म अमोल है, तो इस घर की

कानड़ा कानड़ा महला पंजवा अहं तोरो मुख जोरो गुर गुर करत मन लोरो प्रिय प्रीत प्यारो मोरो रहाओ।